0: जूं बतागा तो पुलान जुट गायुगा।
1: शो आई?
0: लायश डरे कुंग देखा मशोगो।
1: उसा?
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग लोला हाँ।
1: ओके फ्रेंड, बाय बाय।
2: Mga katupa, exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting!